0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है, कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना। लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान, और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है। क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन। एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का। और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में। हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं। द दियोल ब्रदर्स, दिस सडनली एवरीवेयर। एंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट। लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस। शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से। ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है। सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा। बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन, कहीं जाना मत। आई विल बी बैक।
0: नंबर 20।

0: मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है। और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं। एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कंप्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी।
2: नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 17.

0: हर एक्टर जुड़ गया ना तो अटेंडेंस रजिस्टर खोलना पड़ेगा। लेकिन मजाक एक तरफ, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे एक और ट्रेंड से रूबरू करवा दिया। बॉलीवुड अब सिर्फ फिल्म्स के सीक्वल्स नहीं बना रहा, बॉलीवुड यादों के सीक्वल्स बना रहा है। पहले फिल्म का सीक्वल आता था, लेकिन अब फिल्म के साथ उसमें जो गाने थे उनके भी सीक्वल आ रहे हैं। भूल भुलैया वापस आती है तो उसका टाइटल ट्रैक भी वापस आ जाता है।
1: तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में आके लुकिंग फॉर यू बेबी।
0: डॉन वापस सो उसकी थीम वापस, धूम वापस तो उसकी भी थीम वापस, एंड देन यू गॉट है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें टाइटल ट्रैक भी है, चुनरी चुनरी भी है। पहले नोस्टैल्जिया साइड डिश हुआ करती थी, अब नोस्टैल्जिया मेन कोर्स बन चुकी है। शायद इसलिए जब कोई नया गाना अपनी खुद की पहचान बना लेता है तो वो और भी खास लगने लगता है, जैसे गाना नंबर 15 Once Again by विशाल मिश्रा।
2: नंबर 15
3: जो

वेलकम टू द जंगल। और उस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये फिल्म कम लगती है और बॉलीवुड कॉमेडी एक्टर्स की एनुअल जनरल मीटिंग ज्यादा। इतने लोग हैं इसमें कि अगर एक

दीवानियत, एक ऐसा गाना जो किसी पुरानी याद को बोरो नहीं करता, अपनी याद बनाने की कोशिश करता है। और अब नंबर 14 पे एक गाना जो पहले इंटरनेट का था फिर बॉलीवुड का हो गया। दिस वन इज फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, हमने वही दिल लगाया, बाय द मंडल ब्रदर्स।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 13.

0: जाइए सजना बाय द ऑसम चिक जैस्मिन सैंडलर्स। और धुरंधर मेरे लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। ये एल्बम सिर्फ हिट नहीं हुई, ये नए सिंगर्स को भी स्पॉटलाइट में लेके आई। जैस्मिन सैंडलर्स को ही आप देख लीजिए, काफी सालों से वो गाने गा रही हैं, यार ना मिले, इलीगल वेपन, लेकिन कभी कभी एक गाना ही काफी होता है पूरा परसेप्शन बदलने के लिए। और फिर बॉलीवुड का म्यूजिक बिजनेस मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक तरफ नई आवाजों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ आवाजें पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। कुछ दिन पहले मेरा फोन जो है वो शफल मोड पे था और अचानक ये गाना चल पड़ा।
1: हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाहुदा तुझको है चाहता जान।
0: Do you remember the song? It was from Murder 2. और सिंगर थे हर्षित सक्सेना, एक ऐसे सिंगर जिनका नाम सुनते ही आज भी ये गाना मुझे याद आ जाता है। लेकिन उसके बाद where did he go? Chartbusters की लिस्ट में वो नाम फिर कभी वैसे नजर ही नहीं आया। And then there is a name जो मुझे याद आया, which is the most shocking, अंकित तिवारी, मेरा दोस्त, एक सिंगर कंपोजर जिसने बैक टू बैक दो ऐसे गाने दिए जो पूरी जनरेशन की प्लेलिस्ट को डिफाइन करते हैं।

यार सवाल ये नहीं है कि अंकित तिवारी कहाँ चले गए, सवाल ये है कि बॉलीवुड म्यूजिक इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाता है। कल जिस आवाज पर पूरा देश फिदा था, आज उसकी जगह कोई नई आवाज ले लेती है। लेकिन मेलेडी की एक खूबसूरत बात है, वो रिटायर नहीं होती, बस नए चेहरे ढूंढ लेती है। और इस वक्त उस नई आवाज का नाम है फहीम अब्दुल्ला। नंबर 12 पे इज इटर्नल हिट सैयारा का टाइटल ट्रैक। नंबर 12।

Mirchi, it's hot. Suren ke saath only on Mirchi, it's hot. Number 11.

0: चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है। इसे शाम की ठंडी हवा, इसे वो लंबी ड्राइव, इसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना। और हाँ, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है, दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। एंड हाउ शाहिद कैन स्टिल लुक सो कन्विंसिंग एज अ कॉलेज बॉय, इट टोटली बैफल्स मी, बट ही नेल्स इट। मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, बस इतना पता है मैं इसे स्किप नहीं कर पा रहा, एंड मे बी दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ सॉन्ग कैन गेट। Maybe this song will go to number 1, लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds, और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का, दो अलग दुनिया एक साथ, this is तुझको from Cocktail 2.
1: Number 10.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 9.

नंबर 9 पे था वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा ए आर रहमान। एक और रिमाइंडर कि प्यार सिर्फ शोर नहीं मचाता, इट डजंट हैव टू बी लाउड, कभी कभी वो धीरे से दिल में जगह बना लेता है, और शायद इसलिए कुछ फिल्म्स वक्त के साथ और बड़ी हो जाती हैं। ये जवानी है दीवानी उसकी रिलीज को अब 13 साल हो गए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त लोग उसे एक फन समर एंटरटेनर समझ रहे थे, ग्लॉसी स्टार्स थे, ब्यूटीफुल लोकेशंस, द धर्मा स्टाइल रोमांस, लेकिन आज समझ आता है कि फिल्म एक्चुअली थी किस बारे में, द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, द अर्ज टू चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो, और वो कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन एम्बिशन एंड बिलोंगिंग। अयान मुखर्जी ने उस जेनरेशन की कंफ्यूजन को बॉलीवुड स्केल पे कैप्चर कर लिया, और फिर आता है उस फिल्म का म्यूजिक।

ये सिर्फ होली का गाना नहीं रहा। ये सिर्फ पार्टी ट्रैक नहीं रहा।

0: ये सिर्फ ट्रैवल सॉन्ग नहीं रहा, ये गाने लोगों की मेमोरीज बन गए। लेकिन अगर उस पूरी एल्बम में एक थीम थी, एक स्पिरिट था, एक सोल था, तो वो था कबीरा। वो गाना जो आप सेलिब्रेशन में नहीं सुनते, आप उसे तब सुनते हो जब जिंदगी थोड़ी सी लाउड हो जाती है और आपको थोड़ी सी खामोशी चाहिए। फिल्म में उसके दो वर्जन थे, लेकिन माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज द वन दैट इज क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट। अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में दिस इज द रीप्राइज वर्जन ऑफ कबीरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: व्याह करवा दो जी। एंड ऑनेस्टली है जवानी तो इश्क होना है, थिएटर्स में आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो एक हफ्ते के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस ने फिल्म को कितना एक्सेप्ट किया है, कितना अपनाया है। लेकिन इस हफ्ते एक और फिल्म ने मेरा ध्यान खींच लिया, कॉकटेल 2। इसका ट्रेलर आ गया ऑन यूट्यूब। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड द फिल्म और मैंने भी सोचा यार कि जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ जरा देख लूं, जानू तो सही शाहिद, रश्मिका और कृति आखिर अपनी फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। और वो वीडियो देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। ट्रेलर हिंदी में, फिल्म हिंदी में, गाने हिंदी में, लेकिन स्टेज पर हुई बातचीत पूरी अंग्रेजी में। और ये बात सिर्फ कॉकटेल 2 की नहीं है, आजकल किसी भी बड़ी फिल्म लॉन्च को देख लीजिए, कभी कभी लगता है फिल्म का प्रमोशन कम और एमबीए में वाइवा ज्यादा चल रहा है। अब ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश वाली डिबेट नहीं है बॉस, वो बोरिंग है। ऑडियंस इंग्लिश समझती है, चाहे वो दुबई में बैठी हो, चाहे कानपुर में बैठी हो, चाहे मुंबई में बैठी हो, चाहे इंदौर में बैठी हो। इशू भाषा का नहीं है, इशू कनेक्शन का है, क्योंकि सिनेमा तब बनता है जब आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं। और ऑडियंस को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप उनकी भाषा बोलें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक भाषा में बात करता है और सपने दूसरी भाषा में बेचता है। ऑडियंस अब टाइटल्स पढ़ लेगी, एक्सेंट भी समझ लेगी, इंग्लिश भी समझ लेगी, बस एक चीज है जो ऑडियंस के साथ नहीं चलती, एंड दैट इज फेकनेस। हमें चाहिए कनेक्शन। लेकिन इस फिल्म के एक गाने का जबरदस्त कनेक्शन लोगों के साथ ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ रहा है। आई हैव बीन हियरिंग इट ऑन लूप, मेरे दिमाग से ये गाना नहीं निकला है। इट्स ऑन नंबर 6 दिस वीक, माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2, 4 पोजीशंस ऊपर, सर्टिफाइड बैंगर बाय प्रीतंदा, क्रिटिक्स गए तेल लेने।
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, some collaborations, right? Just work. उसका कोई reason नहीं होता. You can't explain it. You can't manufacture it. शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे honestly उनके fallout के बारे में कुछ नहीं पता. I have zero interest in it. मेरा interest सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड ये बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे, जर

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 3.

0: वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ? करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज़ शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन stylish international crime thriller, criminal mastermind, ऐसा anti-hero जिसके लिए आप secretly root करने लगते हो, there is none, zero, कोई भी नहीं है। और शायद इसलिए Dawn important है, क्योंकि जब Bollywood हर दूसरे हफ्ते एक sequel announce करता है, तब उसकी सबसे unique franchise uncertainty में खड़ी है, and that feels strange। हो सकता है Dawn 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, which is why I said it's the death of cool. So now it is up to Farhan Akhtar. वही डिसाइड कर सकते हैं if India gets another Dawn, if the world gets another Dawn, या फिर maybe we have seen the last of him. फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर वन एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव, ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर वन, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर
1: नंबर वन।

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Imagi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वीकेंड चेकलिस्ट, गुड मूड चेक, ग्रेट म्यूजिक चेक, रैंडम डांसिंग इन योर रूम होपफुली चेक. दिस इज क्लब मिर्ची एंड वेलकम बैक पीपल.

facha, suena la música DJ, ¿qué pasa?

pasa? Súbeme la música, DJ. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

वेलकम बैक वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, बट टुनाइट वी आर सर्वाइविंग ऑन म्यूजिक मैडनेस एंड मैक्सिमम एनर्जी. द बॉडी

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

टेस्टी सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा, बोल तलवार से, दिल का शिकार कर, हनी जरा प्यार।

0: बस तुम रहते हो।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: Radio Mirchi.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
4: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अंदर की कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला क्या था, बताएंगे।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग. यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न. यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं. पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं. बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ. यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स. मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर. कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर. और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है. ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड. बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग. बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल. वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं. कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था. सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान. And we always tend to separate it. हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? You can go to the gym and be, you know, strong and do exercise and be good in sport, but you can also be good in studies. And you can be a smart guy, you can go to the best colleges, engineering, commerce, arts, business. You know, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को. और आई थिंक ये आइडिया है, मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं. वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है. यू नो, ही इज अ वानर. वन का नर मींस सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन. लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है. आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान. ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची. स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे. वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस. तो स्टे ट्यून्ड.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त. कीप लिसनिंग.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बंदर कौन है? और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड, बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है? और फिर वो कहता है, बंदर बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम। तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड।
2: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: Mitchie, it's hot.
1: तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
0: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
0: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
1: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफकोर्स देर आर स्टोरीज की उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose.
3: All right. Thank you so much for the answer. Thank you.
1: Welcome, Akshata. तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
2: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: Mirchi, it's hot.
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: It's hot.
0: So, now I want to discuss one of the most powerful images of Hanuman, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं. तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू. नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे. लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है. बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है. पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है. अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम. तो स्टोरी है, हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक. इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है. वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं. उनके अंदर कितने कैपेबिलिटीज हैं. ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना. सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन. जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं. ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं. आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस. So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik Show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
1: The Devdutt Patnaik Show.
3: हमें ही नहीं, हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. कब और क्यों? बताएंगे देवदत्त.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीज़ें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज़ यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुद्र दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था मैं इतना योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था मैं 10 योजन जा सकता, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं। एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे, सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: हाय
3: हाय, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: पावला सा रंग तेरा, पावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: स्कूल टाइम में दिस टाइम यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ माय लाइफ.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, ये time, बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का time हुआ करता था. और हम इस time में ना, बचपन में नानी के घर पर ऐश किया करते थे. And you know, I realized this, कि मुझे पिछले साल तक भी गर्मियां बहुत पसंद थी. And then I questioned myself, कि ऐसा क्यों? कि गर्मियों में आम के अलावा ऐसा क्या खास है कि one would love this मौसम? और जवाब में अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि ये वो मौसम है जब हम गर्मियों की छुट्टियां enjoy किया करते थे. और तब से लेकर आज तक, just for the sake of nostalgia, I still liked summers until 2023, जब मेरी opinion बदली और मैं अपने आप से ये कह सकती हूँ कि अब मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है. चॉइसेस बदली हैं तो साथ ही साथ छुट्टियां भी तो बदली हैं यार. बिकॉज बड़े होने के साइड इफेक्ट्स के साथ अब गर्मियों की छुट्टियां ऑफिस जैसी जगह पर नहीं मिलती, और एक डेढ़ महीने की छुट्टियां तो डेफिनेटली एक साथ नहीं मिलती यार. तो आज क्या बोलते हो, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गर्मियों की छुट्टियों में पार्क करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: पूरे साल ना मैं जब अपने घर पे रहा करती थी तो मैं बड़ी कॉशियस रहती थी कि ये मेरा तौलिया है, ये मेरा कंघा है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ये सब भूल जाया करती थी मैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों में ये ट्विस्ट लाइफ में आता था जहां एज अ किड आई यूज्ड टू गो इन माय शेयरिंग एंड केयरिंग जोन, क्योंकि हम इतने सारे कजिन्स एक साथ होते थे कि मेरा चल ही नहीं सकता था बॉस। खाना शेयर करना हो, बेड शेयर करना हो या चीजें शेयर करनी हो, हम लोग ना सुबह तो एक बार नहाते ही थे लेकिन एक बार शाम को फिर से नहाते थे और सब एक के बाद एक नहाया करते थे। और शाम को ना मैं ऊपर अपने रूम में जाने से बचने के लिए नीचे आंगन वाले बाथरूम में ही नहा लिया करती थी। और इस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि टॉवल जो है वो मुझे अपने रूम से लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कजिन का टॉवल शेयर कर लिया करती थी यार। एंड तब ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता था कि हाइजीन है, ओ ये मेरा टॉवल नहीं है। और इम्यूनिटी के साथ साथ ना यूनिटी भी बढ़ जाया करती थी। एक प्लेट में से एक साथ खाना खाना, सब कुछ एक साथ करना, नो वंडर हम वो जनरेशन है जिन्हें हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन टाइप मूवीज ना बहुत पसंद आती है। Because we could connect with these films really well. Hai ki nahi? Chalo ji, with this coming up the next track, you stay tuned with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi, it's hot.

0: गोला बर्फ याद है आपको?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और कोई इसे चुस्की बुलाता है तो कोई गोला बर्फ। बुलाए हम इसे कुछ भी, लेकिन इसका स्वाद हर जगह सेम है, आइस एंड सिरप। मुझे याद है हम लोग दिन में जब सब बड़े सो जाया करते थे ना, तब एक डिश लेकर मुल्ला जी की दुकान पर जाया करते थे। और मुल्ला जी की दुकान एक छोटी सी दुकान थी, जो दुकान कम और खिड़की ज्यादा लगती थी, जहाँ उनकी बर्फ घिसने वाली लकड़ी की और लोहे की एक मैनुअल मशीन हुआ करती थी, जिस पर वो बर्फ घिसते और फिर हमारे चॉइस के रंग का शरबत उस पर डालकर गोला बर्फ बनाकर हमें दिया करते थे। हाय, आपसे बात करते करते ना ऑरेंज वाला जो गोला बर्फ था ना, उसका स्वाद आ गया। आपका कौन सा फेवरेट कलर था? क्योंकि बचपन में हम फ्लेवर कम और कलर ज्यादा बोला करते थे। Stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: क्या आपको ये आवाज सुनकर कुछ याद आया? पहले अगर नहीं आया तो ये आवाज आपको जिब्रिश लग रही होगी, लेकिन आगे जो मैं बताने जा रही हूँ ना, आप डेफिनेटली सारे डॉट्स कनेक्ट करके याद कर पाओगे कि अच्छा, ये तो वो बात कर रही है सारा।
2: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये आवाज पिंगू की है। याद है पिंगू? DD1 पर ये छोटा सा पेंगुइन अपनी मस्ती और शरारतों से हमें कितना हंसाता था, दिल खुशी से झूम उठता था। बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ एक्सप्रेशंस और मजेदार साउंड्स के साथ ना, पिंगू ने हम सबका दिल जीत लिया था। पिंगू के साथ उसकी छोटी बहन, उसके मम्मी पापा और वो क्यूट से आइसबर्ग हाउसेस, सब कुछ कितना प्यारा था ना। मुझे ना आज भी पिंगू वाला एनिमेशन बड़ा प्यारा लगता है यार। क्या आपको याद है जब पिंगू अपनी छोटी बहन को परेशान करता था, तब वो अपने पापा से डांट भी खाता था। वो मासूमियत और वो मजाक से भरे हुए पल आज भी हमारे बचपन की प्यारी सी यादों में से है। और इस शो के एनिमेशन का मुझे वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जहाँ पर इन पेंगुइन्स का टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाने वाला सीन होता था। सब खाना खाने लगते थे और ये सारी की सारी फैमिली इतनी क्यूटली टेबल पर बैठकर फिश खा रहे होते थे। आज भी मैंने जब ये एनिमेशन शो देखा ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज का एहसास हुआ और वो था सुकून। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम लोग जसपिंदर नरूला द सिंगर के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। और मैं तो उनको जब किसी गाने में देखा करती थी तो खोस ही जाया करती थी क्योंकि उनके लंबे काले घने बाल और ऊपर से उनकी आवाज का कमाल, ओए होए। लेकिन वेरी लेस डू वी नो अबाउट हर फादर सरदार केसर सिंह नरूला जी, जो कि खुद एक सिंगर थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यस, जसपिंदर नरूला के फादर सरदार केसर सिंह नरूला जी, ही वाज अ सिंगर एंड अ वेरी गुड सिंगर। और जसपिंदर नरूला को जो ये गिफ्ट ऑफ वॉइस मिला है वो अपने फादर से ही मिला है, उन्होंने ही इन्हें ट्रेन किया है। लेकिन देयर वाज दिस वन डे इन हिज लाइफ जब उनकी आवाज ऑल ऑफ अ सडन चली गई और उसके बाद वो गा ही नहीं पाए। वेल, जसपिंदर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि ये उनके साथ तब हुआ जब उनके एक शागिर्द ने उन्हें कुछ खाने के लिए लाकर दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इसे खाइए, क्योंकि उनकी तबीयत या आवाज में कुछ तो नासाजी थी, कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये खाइए और अगले दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक होना तो दूर की बात, उनकी जो आवाज थी वो तो ऐसी गई कि कभी वो वापस से उस तरीके से गाना गा ही नहीं पाए जिस तरीके से वो पहले गा चुके थे और उनकी आवाज में इतने गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। एंड यस, ये दुनिया इज अ मिक्स बैग ऑफ पीपल, जहाँ पर अच्छे लोग तो हैं ही हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की अच्छाई या दूसरों का अच्छा होना कभी पसंद नहीं आता, तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा जाती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: गरम मसाला का ये जो गाना है ना, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसकी खबर भी कुछ गरम मसाले से कम नहीं है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, गरम गरम मसाले वाली खबर ये है कि दिस गाना फ्रॉम द फिल्म गरम मसाला इज नॉट एन ओरिजिनल। Well, the deal is कि ये गाना actually inspired है from an Egyptian song जो कि 2001 में release हुआ था, वाला अला बल हो, which was sung by Amrut Diab, who is an Egyptian singer and composer, and the song is this one. ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले इस गाने के कंपोजर को ढूंढने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स या तो वो प्रीतम दा होते या तो वनु मलिक, एंड इस केस में इट इज प्रीतम दा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है सोनू सूद जो है, he has been saving lives since 1997.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अब आप सोचोगे कि हाँ क्या बात कर रही हो यार सारा, सोनू सूद का दिल इतना बड़ा है कि ये इंडस्ट्री में आने से पहले से ये सारे काम कर रहे थे. तो वेल एक्चुअली वो जो जिंदगियां बचाने का काम कर रहे थे ना, वो नागराज बनकर कर रहे थे. हाँ आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि मुझे भी नहीं था और हमने ये रियलाइज भी नहीं किया कि नागराज कॉमिक का एक टेलीविजन एड आया करता था और उस टेलीविजन एड में हरे कपड़े पहने हुए जो नागराज बंधु थे ना, दैट वाज सोनू सूद. रिवाइज करने के लिए आपको एक बार एड सुनाती हूँ, क्या पता आपको याद आ जाए.
3: नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आग का तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नार.
1: अभी कुछ याद आया? वेल इस एड में वो जो हीरो हुआ करते थे वो अपने सोनू सूद ही हुआ करते थे यार. अगर आपको ये बात अच्छे से देखनी है और फिर बोलना है कि अरे हाँ यार, तो यूट्यूब पे जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा ये एड. अभी के लिए स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मैंने आज वर्ल्ड साइकिल डे पर साइकिल से रिलेटेड कई सारी बातें करी हैं और अब मैं आपको उस एक्टर के बारे में बताती हूँ जो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन के लिए कार में नहीं साइकिल पर पहुंचे थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ तो नहीं, क्योंकि सलमान खान तो शौकिया तौर पर साइकिल चलाते हैं, लेकिन जिन एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो मजबूरी में साइकिल चलाकर अवार्ड रिसीव करने के लिए गए थे, और ये है आशुतोष राणा, जिन्हें अपना पहला फिल्म फेयर मिलने वाला था फॉर द मूवी दुश्मन, लेकिन वो तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया करते थे। एंड फॉर द अवार्ड फंक्शन ही चोज टू राइड अ बाइसिकल, एंड इन एन इंटरव्यू ही रिवील कि एट दैट टाइम ही एंड हिज नाउ वाइफ रेणुका शाहने वर डेटिंग ईच अदर, और रेणुका ने उन्हें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करके सरप्राइज दिया था, एंड आफ्टर दैट आशुतोष ने रेणुका को एक कार गिफ्ट करी। इसे कहते हैं कपल गोल्स। तो चलो इसी बात पर आशुतोष की फिल्म संघर्ष से हो जाए अगला गाना। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: कोयला मूवी में जो म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग. इस म्यूजिक में ना एक कसक है जो लिटरली दिल के तार छू जाती है. एंड आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि जितना मैं कोयला के म्यूजिक को फील करती हूँ ना, उतने मेरे पास शायद अल्फाज नहीं होंगे टू एक्सप्लेन इट. बट दिस सॉन्ग

वैसे तो इस गाने की सिचुएशन इन द फिल्म इज डिफरेंट, लेकिन आज की अगर बात करें ना तो आई फील कि दिस सॉन्ग इज फॉर दोज टू पीपल जो एक बड़े से शहर में जाकर अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग अक्सर इतनी भीड़ में खुद को तन्हा ही पाते हैं, और जब दो तन्हा दिल मिलते हैं तो वो दोनों के अकेलेपन को समझते हैं और वहीं कनेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि यही है वो तन्हाई जो दोनों को पास ले आई। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरा ख्याल करना है तो शो के बाद इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का

0: झुमका
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची।

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को काफी गाइड किया है इस इंडस्ट्री ने।
2: श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मैं साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय, जिससे टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे आइडियाज उठाए हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फिल्में लेकर आई हूँ जो साउथ इंडियन फिल्म्स के हिंदी रीमेक्स हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट में बात की अबाउट द मूवी स्वदेश। अब नंबर दो पे हम बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। वेल, ये फिल्म जो है वो मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग पे बेस्ड है, जो 1989 में रिलीज हुई थी और उसको भी प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म में कॉम्बिनेशन है ह्यूमर और अनएम्प्लॉयमेंट की हार्श रियलिटी का, और हेरा फेरी में टाइमलेस कैरेक्टर्स, मस्त डायलॉग्स और अनफॉरगेटेबल केमिस्ट्री ने हम सबका दिल जीत लिया। तो अगर आपको हेरा फेरी पसंद है, देन मौका मिले तो रामजी राव स्पीकिंग भी जरूर देखिएगा। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009 और ये 2005 में आई तेलुगु फिल्म सुगाडू का हिंदी रीमेक थी। सो इस रोमकॉम ने तेलुगु फिल्म की स्पिरिट तो उठाई, लेकिन उसको ड्रेसअप किया लार्जर देन लाइफ बॉलीवुड कॉमेडी के साथ और दो अमेजिंग एक्टर्स के साथ, रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसी ही फिल्मों की डिस्कशन बाकी है, बट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।